भाइयों, संगीत के सफर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन माधुरिका की रानी और हिंदी संगीत की कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और लता मंगेशकर जी के संगीत करियर के बारे में बात करेंगे। मेरी सोच यह है कि लता जी के निधन ने आने वाली वर्षों के लिए संगीत उद्योग में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया है और उनकी सुरीली आवाज को याद रखी जाएगी। तो चलो दोस्तों, लता जी के करियर के बारे में बात करते हैं। लता मंगेशकर हेमा मंगेशकर के रूप में जन्मा था 28 सितंबर 1929 में। लता जी एक भारतीय गायिका और संगीतकार थी। उन्हें व्यापक रूप से भारत में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में एक माना जाता था। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे सम्मानित खिताब प्राप्त किए। तो आओ दोस्तों, सुनते हैं ये गीत, आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार। फिल्म मधुमति, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, लता जी ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए थे, हालांकि मुख्य रूप से हिंदी और मराठी में। उन्हें अपने पूरे करियर में कई सम्मान मिले। 1987 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 2001 में राष्ट्र के लिए उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाली M.S. सुबलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी महिला गायिका है। लता जी, फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया। लता जी 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगला फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर सर्वोच्च महिला प्लेबैक पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर विशिष्ट पुरस्कार, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 1974 में वह लंदन की रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय है। दोस्तों, आइए सुनते हैं लता जी की ये गीत, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। फिल्म पाकीज़ा, गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार गुलाम मोहम्मद,

बहनों और भाइयों, लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था। लता जी एक मराठी और कोंकणी संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर और उनकी पत्नी सेवंती की सबसे बड़ी बेटी थी। लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल गायक और थिएटर अभिनेता थे। उनकी माँ सेवंती थलनेर मुंबई प्रेसिडेंसी अब उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में की एक गुजराती महिला थी। तो चलो दोस्तों, अब सुनते हैं लता जी की ये गीत, घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, गीतकार शैलेंद्रा, संगीतकार शंकर जयकिशन।

बहनों और भाइयों, दीनानाथ ने अपने नेटिव शहर मंगेशी, जो गोवा में एक गांव है, इसके साथ अपने परिवार की पहचान कराने के लिए मंगेशकर उपनाम अपनाया। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया। उनके माता पिता ने बाद में उनका नाम लता रखा। ये नाम उसके पिता के नाटक भावबंधन में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर रखा था। आओ दोस्तों, सुनते हैं ये गीत, आएगा आएगा आने वाला, फिल्म महल।

बहनों और भाइयों, लता जी ने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 5 साल की उम्र में उसने अपने पिता के संगीत नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। स्कूल के पहले ही दिन उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल ने उसे अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं दी। लता जी अक्सर अपनी छोटी बहन आशा को साथ ले जाया करते थे। 1942 में जब लता जी 13 वर्ष की थी,

का हृदय रोग से मृत्यु हो गया। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उनकी देखभाल की। उन्होंने लता जी को एक गायक और अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को शुरू करने में मदद की। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सुनो सजना पपीहे ने फिल्म आए दिन बाहर के गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,

बहनों और भाइयों, लता जी 1945 में मुंबई आ गए जब मास्टर विनायक की कंपनी ने अपना मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। 1948 में विनायक की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने उन्हें एक गायिका के रूप में सलाह दी। हैदर ने लता जी को पहले बड़े ब्रेक दिल मेरा तोड़ो मुझे कहीं का ना छोड़ा गाने के साथ दिया। नजीम पानीपति के गीत फिल्म मजबूर और ये 1948 में था जो उनकी पहली बड़ी सफलता वाली फिल्म थी। सितंबर 2013 में 84 जन्मदिन पर एक साक्षात्कार में लता जी ने स्वयं घोषणा की, गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। वह पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास दिखाया। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत पिया बिना बासिया। फिल्म अभिमान, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार एसडी बर्मन।

बहनों और भाइयों, कहा जाता है कि शुरुआत में लता जी ने प्रशंसित गायिका नूरजहान की नकल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने गायन की अपनी शैली विकसित की। 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने पुणे में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की स्थापना की, जिसका प्रबंधन लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। 2005 में उन्होंने स्वर्णांजलि नामक एक आभूषण संग्रह तैयार किया, जिसे एक भारतीय हीरा निर्यातक कंपनी अडोरा द्वारा तैयार किया गया था। लता जी ने 5 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है और 5 फिल्मों का निर्माण भी किया है। तो आओ दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत, नाम घूम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, फिल्म किनारा, गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन, और इसे गाया है लता मंगेशकर और भूपेंद्र।

बहनों और भाइयों, लता जी 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पूरे देश को उनकी कमी महसूस होगी और उसकी सुरीली आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन इस एपिसोड से विदा लेता है और अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।